0: साहित्य पुछ वाले जिनकी थी सो पार पे कहो नान करते किया बाता जो किश करना सो कर महला तुझा
1: जो शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द शूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द

हथ छो जितक साई नील वस्त पहरो प्रवान महेश तान कुज प्राण अब आख्या का तब करा खाना।

सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणियन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सुतक।

कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किस है देह सुपावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसया बाजी शब्द घनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मनवाई वसे आज ने

सच्ची वाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पुए सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती स्मरकै गुरु नानक लई ते आए।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सुमरकै गुरु नानक लई तयाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमर। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिठ सब दुख जाए। तेग

सिखानु सिखी दान केस दान रत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर जिया दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे वंगे जगो जग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मनी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं।

कि सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलवोच है राज करेगा खालसा ख्वार हुए।

जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसहा सतना श्री वाहिगुरु जी सोही महला चौथा जिनकै अंतर वसया मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए

तिनके हमे रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण रोगी विच हमे कारक माई जिन किए तिस है ना चेत है बपुड़े हर गुरमुख सोजी पाई होमे रोग सब

सब सिखन को हुकमे गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिलवोचे खोज शब्द में।

सच सब जूर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सुकच निकच। महला पहला।

इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर तरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक,

सर अपार परे छुटत परवा अमय अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवै संत करै मन मजन पुब जिन्हू सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपै पद दीना।

सर अपर परे अनपहो उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया।

दुख पंजन आत्म परबोध मन तत् बिचारे हो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर

गुर जिन को सो पर सन नाम हर हृदय निवास है। जिनको गुर सो पर सन दुर्त दरंतर नास है। गुर जिनको सो पर सन मान अभिमान निवारे। जिनको गुर सो पर सन शब्द लग भव जल तारे। परचो परमान गुरु पायो तिन सक्यतो जन्म जग। श्री गुरु शरण भज काल कब भुगत मुकत सब गुरु लग। सतगुर खेमा तानिया जुग जू समाने। अनपो निजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगत अमर भगत

जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अबरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो तारन तरन खिन मातर जाको दृष्ट धारे शबद रिद विचार।

0: मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो।
1: समर्थ गुरु सिर हथ तरियो, गुरु कीनी किरपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निसबासर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत पांडर्यो, पन दास।

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला भरपूर हाजर हजूर, राजान राज पनान पान, देवान देव उपमा महान, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे पावन और पवित्र स्थान, गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीयां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियां हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने सानू सभना नू पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म सोर ठराग दे अंदर शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीयां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे अंदर 639 ਅਤੇ 640 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।